अंत मूर्ख अंत भोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाए संत पापी पाप असंत मूर यार करे फिर संत मलेच माल पाठ है असंत निंदक करें पाप

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म स्वी कच्छ खाई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते

सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ नरखीसर जुग जुग वेता नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सी तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे।

रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उबाई, कर कर देखे कीता आपना, ज्यो तिस दी वडे आई, जो तिस पावै सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहा पत साहिब, नानक रहन रजाई, आसा महला पहला।

कहे आ जाई, कहने वाली तेरे रही समाई। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा। रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप।

दुख, उत भूखे खाए चली यह दुख। सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा न हुवे घाट न जाए। ना उह मरे न हुवे सूग, देदा रहे न चूके भोग।

तिस पाछे बजरी चरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया।

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई, तुदे आपे पा

तू कर कर वेखह जा नह सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट हुए। आसा महला पहला, तित सरवर डै।

प्रणवत नानक तिन की शरणा, चिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मान।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ तै रक्षा पूर्ण होए चित की चा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबू आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आ सुंदरिय

जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो

देव दैत जच्छन उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंच

एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन सृठ सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम।

कूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती। बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा। केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी। उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा। कहूं सिमट पहू संकरी कैठा, सिगरी सृष्टि दिखाए।

असिक संगरु दुष्ट जिते उठवत उत पाता सकल मलेश करूरन काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम

रामकली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज छेती मन वजिया वादाई।

पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत।

जिको पुंचै तिसका होए उधारो। एह वसत जी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

तन मन थी वह हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वह हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जमके दूत नाए तेरे छड़ जाहे पाओ जल बिकम सगाहु गुर शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल

जिसे सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

सूतरं तुमते हो सो आज्ञाकारी तुमरे गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जैस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनो नित्या बेताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाही देख के डिठ कीता तना प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी किस्सा स्वस्था संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहब तह तहर शरियायत देखते फतेह बिरद की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन शना चौकिया चंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो हिन माणियो के मान नताणियो के ताण न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई अमृत वेले तो लैके हुण तक संगतां नूं खुले दर्शन दारे बख्श के निहाल किया शामा दे दीवाना दे विच महाराज जी संगती रूप विच सुखमणी साहब जी दे जाप किए गए ने संध्या वक्त का समा जाण के सौदा रहर साहब जी दे पाठ हुए महाराज कृपा करनी बाणी पढ़दियां आप जी की सेवा संभाल करदियां होईयां बेअंत बेअंत भुल्लां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बालू तों

0: है सुख मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तेरी बड़ियाई कोई नाम ना जाने, मेरा वाहिगुरु। बोला जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी, अरदास सिख ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकाया गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाव सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई जस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरया कर नौ निध आवै धाए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहेब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाही जागदी ज्योत शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान धरके बोलो जी। हेन माणिया के माण ने, ताणिया के ताण ने, ओटिया की ओट ने, आसरिया के आसरे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जिया का कोटान कोटान धनवाद शुक्र है। वाहेगुरु जी कृपा की आप जी ने अमृत वेले तो लैके हूं तक संतन खुले दर्शन की दारे देकर नदी नदर निहाल किया। इस वेले आप जी सुख हसन होए। सोहिला साहब की बाणी पढ़ी गई, बाणी पढ़द्या सेवा करद्या नेक प्रकार गलतियां होंदिया, जान बच्चे समझ के माफ करना। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट मन कागरतना बाणी पन सेवा कर दी आप जाच बख्शनी, होइयां भुला बख्श देनिया। वाहेगुरु जी हुण कृपा करो, आप अपने निजी स्थानों से विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले दे जागणे बख्शणे, अंग संग रहना सही प्यारे मिलणे, जिन्हां मिलां तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: पंखी एक दर्श तुहारो
1: नानक उन संग मोहे उधारो
0: सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम
0: रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसे
1: प्रभ कै सिमरन दुख्यम न सहे
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे
0: प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागे
1: प्रभ कै सिमरन अंतिम जागे
0: प्रभ कै सिमरन पहु न व्यापे
1: प्रभ कै सिमरन दुख नाशन तापे
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नाउ नीत
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इस नानी
1: प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होए सो भला
1: प्रभ कै सिमरन सो भला
0: से सिमरै जिन आप सिमराए
1: नानक ताके लागू पाए
0: प्रभ का सिमरन

0: तत्काल उधार है।
1: अनक जून जन्मे मर जाम
0: नाम जपत पावै बिसराम।
1: हो मैला मल कबू न धोवे
0: हर का नाम कोट पाप खोवै।
1: ऐसा

0: अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मूर्त कवन दिशानी
0: जिन तू साज सवार सिगारिया
1: गर्भ गण में जिने वारिया
0: पार व्यवस्था तुझे प्यार दूध
1: पर जोवन भोजन सुख सूद
0: हिरद भया ऊपर साख सहन
1: मुख प्याओ बैठ को देन
0: इव निर्गुण गुण कशु न बुझे जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है जे प्रसाद की वैसी तल जला
1: सुखदाई पवन पान कुमला
0: जे प्रसाद भोग सब रसा
1: सगल समगरी संग साल वसा
0: दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना
1: किसे त्याग अवर संरचना
0: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो प्रव्यापे
0: आद अंत जो रखन हार
1: जिसो प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: ताचो मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सत सदा हजूरे
1: ताको वंदा जान अंदूरे
0: जाकी टहल पावे दरगह मान
2: जिसे विसारे मुग्ध अजान
0: सदा सदा इहो भूलन हार
2: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्याग कौबी संग रचे
1: साचो चूट सम्मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर मन
1: सो दूर पुरन
0: छोड़ जाए तिसका श्रम कर
1: संग सहारी तिस पर है
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: प्रीत पसंद संगोए
0: अंधकूप में पतत बिकराल
1: नानक काट लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोक बचारा करे दिन रात
0: बाहर पेख अंतर मल माया
1: शब्द नहीं कछ करे छुपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान।

0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे,
1: अरगले ओढवावे,
0: कहा बुझारत बूझे डोरा,
1: यस कहिए तो समझे पूरा,
0: कहा बिसन पद गावे गूंग,
1: यतन करे तो भी सर भंग,
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन,
1: नहीं ओज वहां उस गवन,
0: करतार करुणा में दीन बेनती करे,
1: नानक तुमरी कृपा सरे,
0: संग सहाई सो आवे नाचीत,
1: योग राई चासे प्रीत,
0: बलुआ के ग्रह पीतर बस,
1: मन केल मारम रस,
0: दृढ़ कर मन है मन है प्रतीत,
1: आनावे मुड़े चीत,
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: चूड़ कार मालो शो,
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म,
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म,
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास,
1: जियो पिंड सब तेरी राज,
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे,
1: तुमरी कृपा मैं सूख ने रे,
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: उच्चे ते ऊंचा भगवंत,
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी,
1: तुम ते हो सो आज्ञाकारी,
0: तुमरी गात में तो तुम

0: अष्टपदी दस वस्तु ले पक्षे पावे
1: एक पस्त कारण पे खोट गवावे
0: एक वीणा दे दस वीर ले
1: तौ मूड़ा कहो कहा करे
0: इष्टा कर सो नाही चारा
1: जाको की जय सब नमस्कार
0: जाके मन लागा ब्रह्म मीठा
1: सर्व सुख ताहू मन बूठा
0: जन अपना हुक्म मनाया
1: सर्व थोक नानक तिन पाया
0: अरंत सब अपनी दे रास
1: हाथ पीत बरतै आनंद उल्लास
0: अपनी अमान कछ बोल सो ले
1: अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
1: और उसका विश्वास न होवे।

0: प्रसाद नानक जसता है।
1: जे प्रसाद सुने करन नाद,
0: जे प्रसाद देखै बिस्माद,
1: जे प्रसाद बोलै अमृत रसना,
0: जे प्रसाद सुख सहजे बसना,
1: जे प्रसाद हस्त कर चलै,
0: जे प्रसाद संपूर्ण फलै,
1: जे प्रसाद परम गत पावै,
0: जे प्रसाद सुख सहज।

0: न्यायी।
1: साध के संग न कबहू तावे,
0: साध के संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस अगोचर लाहै,
0: साध
1: के संग बसै थान ऊचै,
2: साधु के संग महल पूजे।
1: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
2: साध के संग केवल पर ब्रह्म।
1: साध के संग पाई नाम निधान,
2: नानक साधु के करवान।
1: साध के संग सब कुल उधार,
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार।
1: साधु के संग सो धन पावे,
2: निस्संते सब को बरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा,
2: साध के संग सो बासुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलाये न,
2: साध संग अमृत गुण गाये न।
1: साध के संग सर्व थान गम,
2: नानक साध के संग सब जनम।
1: साध के संग नहीं काश काल,
2: दर्शन पेड़ तो उतने हाल।
1: साध के संग कलुख तहरा,
2: साध के संग नरक परहर।
1: साध के संग इहां उहां सोहेला,
2: साध संग विचरत हर मेला।
1: जो इच्छा सोई फल पावे,
2: साध के संग न मिटता जावे।
1: पार ब्रह्म साध हृदय बसै,
2: नानक उतरै साध सुन लसै।
1: साध के संग सुनो हर नाओ,
2: साध संग हर के गुण गाओ।
1: साध के संग न मन ते बिसरै,
2: साध संग सतपुर निस्तर।
1: साध के संग लगै प्रभ मीठा,
0: साधु के संग घट घट तीठा।
1: साध संग पहे

0: स्त्री
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप
2: जैसे जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलोक
2: जैसे सूर सर्प
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान
2: जैसे राजरंक कौला के तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक
2: जो वसुधा को खोदै को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी काहु बनाओ
2: नानक ज्यों पावक का सहज सुभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
2: जैसे मैं नला के जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रकाश
2: जैसे तारु पर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत समान।

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे।

0: ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी कांत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

0: बिस भगवती की मत उत्तम होवे।
1: भगवंत की टहल करे नितनीत,
0: मन तन अर्पै बिसन परीत,
1: हर के चरण हृदय बसावे।
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे,
1: सो पंडित जो मन पर बोधे।
0: राम नाम आत्म मैं सुदे,
1: राम नाम सार रस पीवे।
0: उस पंडित कै उपदेश।

0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: तिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास दसंतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगह परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: तिस दास को सब सोजी पर,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत न

0: तैसा अमृत तैसी भिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अभमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान,
1: जो वरताए साई जुगत,
0: नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करावन जोग,
0: प्रभ पावै सोई फुन होग,
1: पसरे ओ आप होय अनत तरंग,
0: लखे न जाहे पार।

0: अष्टपति कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट पय तीर्थ वासी
1: कई कोट बन पर में उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तभी स्रोते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार
1: कई कोट का का विचारे
0: कई कोट नव तन नाम त्याव
1: नानक करते का न पावे
0: कई कोट पय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर
1: कई कोट पिक आत्म कोर
0: कई कोट पर दर्ब कोहिर
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट परदेश परमाहे
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरखन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससी सूर नख

0: कई कोट राजस तामस सात्वक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र,
0: कई कोट किए रत्न समुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंत,
0: कई कोट किए चर जीवे,
1: कई कोट गिरी मेर स्वंतीय,
0: कई कोट जख किन्नर पिशाच,
1: कई कोट भूत प्रेत सुकृत मृगाच,
0: सब ते निरह सब हूते दूर,
1: नानक आपोल पुत्रेह भरपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्मै जीवै मरै,
1: कई कोट बाजो निहरै,
0: कई कोट बैठत ही खाहे,
1: कई कोट काल तक पाहे,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया में चिंत,
0: जह जह पहना तै तै राखे,
1: नानक सब कुछ प्रभ के हाथे,
0: कई कोट भय बैरागी,
1: राम नाम संतन लब लागी,
0: कई कोट प्रभ कौ खोजंते,
1: आत्म में पार बमलांते,
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
2: जिनको मिले प्रभ नास,
0: कई कोट मांगे

0: गर्भबलि
1: जिसके अंतर राजमान
0: सो नरक पति होवत स्वान
1: जो जन मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत।

0: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
1: धनवंत होए कर घर भावे
0: कृष्ण मान कष्ट न जावे
1: बहुल अस्कर मान ऊपर करे आस
0: फल पीत्रता का होए विनाश
1: सबते आप जाने बलवंत
0: इनमें होए जाए पसमंत।

0: अवतार
1: अनग जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर कर गए कहो कैसे गवे
1: आपस कहो जो भला कहावे
0: जिसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जाता मन होए
0: हो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इसको सुख

0: से व्यथा कोई नाही।
1: रे मन मेरे सदा हर जाप,
0: अगनासी प्रभ आपे आप।
1: अपन किया कछु न होए,
0: जे सौ प्राणी लोचै कोए,
1: तिस बिन नाही तेरा किच काम।
0: रत नानक जप एक हर नाम,
1: रूप वंत होए नाही मोह।
0: रब की जोत सकल घट सो है,
1: तन वंता होए क्या खूब गर्व।
0: सब किस तिसका दिया गर्व,
1: अत सूरा।

0: का शब्द मन असथ मन
1: ज्यो पाखाण नाव चढ़ तर
0: प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रगास
0: गुरु दर्शन देख मन होए विगास
1: ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे
0: त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बाचो तूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूरख काहे बिल्लाइय
0: पूर्व लिखे का लिखिया पाइय
1: दुख सुख प्रब देवन हार
0: अवर त्याग तू तिसै चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बस्त आई तेरा संग
0: लपट रहे उ रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पथ से ती कर जाहे
1: जिस बखर को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तज अब मान लेहो मन मोल
0: राम नाम हृदय मैं तोल
1: लाद खेप संत है संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: तन तन कहे सब कोए
0: मुख उज्जल हर दरगह सोए
1: एहो बापार बिरला बापार है
0: नानक ता कह सद बलहार है
1: चरण साध के तोहे त्योई बियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की तूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा बड़ भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अनक बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाए अमृत रस चाख है
1: कोट गही संत है दर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जीवालन हार
0: को देवता आधार
1: सर्व निधान जा

0: सब ते ऊच निर्मल करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सो जन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: इस जन आवे हर प्रभ चीत
1: भगत भगत सुनिए ते लोए
0: जाके हृदय को होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सत मुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच वरत साचा

0: मन ते है नसे
1: जिसका सा तिन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: सित पाई चूके भ्रम गवन
0: सुन नानक हर हर जस श्रवन
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही
0: अगला पार जिन

0: राष्ट्रपति संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमरनाम आधार
0: अवर उपाव सदमीत बिसारो
1: चरण कमल रज माए उतारो
0: करण कारण सो प्रभ समरथ
1: दृढ़ कर कहो नाम हर वत
0: संचो हो वो भगवंत
1: संत

0: नरक को स्वर्ग बंशावत
1: आल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै पार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार की ओ बखियान
1: अपन खेल आप कर देखे
0: खेल संकोचे तौ नानक एक है।

0: ए लोक सुखिए पर लोक सोहेले
1: घर प्रभाते मिले
0: साध संग मिल कर हो आनंद
1: परमानंद
0: राम नाम तत करो विचार
1: देखा करो दार
0: अमृत बचन हर के गुण गाओ आठ पहर प्रभ के खूनेरा सुन उपदेश हृदय बसावह
1: नानक बल पावो
0: हलत पलत दोए लेहो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी।

0: मात पूरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन पेक सौदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सबल दर्शन सुंदर हर रूप
0: धन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसै

0: सो गौरा होए, अपराधी दूणा निवे जो हत्ता मिर्गाही, शीश नुमाए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाहे। महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सेल पूजस बगुल समादंग

तिस बिना नहीं कोई, जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए, वेद सिमृत कथा शास्त्र भगत करहे विचार, मुक्त पाइए साध संगत, बिन सुजाए अंधार, चरण कमल

निरंकार। वाहिगुरु ने जिस वेले गुरु नानक साहब जी नू संबोधन कीता ते आख्या हे कुदरत, समय समय पीर पैगंबर अवतार आए पर उन्हां दियां करामातां उन्हां दे नाल ही अलोप भी हो गई। गुरु नानक एक ऐसा जिसकी करामातां अज भी संसार विच जाहिर प्रगट हैं। ताई साहब भाई, ताइयों भाई साहब भाई नंद लाल जी आखते हैं गुरु नानक साहब जी दी, गुरु नानक आमदो नारायण स्वरूप।

पंच परवान पंचे पाव है दरगह मान पंच परवान पंचे पाव है दरगह मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुर

तवलै उपर किता पार धरती खोर पर फोर होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया

समा थोड़ा तेज चल रहा है ना, पच्चीस तक पूरा कर सारी हटवा। पैंती अखरी उड़ा एड़ा एड़ी सारे ने बोलना जी ना।